0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: बाबा जी मेरा विवाह नहीं हो रहा, कोई मंत्र था फूको बच्चे थे।
3: 6478886000।
2: बाबा जी आ केड़ा मंत्र है?
3: बच्चा ए नंबर चमत्कारी है, जिन्हें मिलाया ओदी समझो विवाह दी तैयारी है।
2: पक्की गल बाबा जी?
3: बाबे दा घर भी एना ने बसाया है, NRI मैरिज ब्यूरो।
4: हर कास्ट अते हर प्रोफाइल दे रिश्ते लई भरोसे दा नाम NRI मैरिज ब्यूरो। कॉल 6478886000 और विजिट NRIMB.com।
5: सियाने कहंदे ने व्याह दा लड्डू जो खाए ओ पछताए, जो ना खाए ओ भी पछताए,
6: पर एक लड्डू खा के कोई नहीं पछताउंदा, ओ है जी स्वीट महल दा लड्डू,
5: जिस विच है प्यार दी मिठास, कई सालां दा विश्वास, खालस सामग्री नाल तैयार ताजिया मिठाइयां अते खाने।
7: थोड़ा खाओ वधिया खाओ, स्वीट महल नाल जश्न मनाओ।
8: या आज ही पहुंचो 680 रेक्सडेल बुलेवार्ड, यूनिट 9, नियर हाईवे 427, 416-679-9191।
9: हाय मेरे तो पैर ही पुंजे नहीं लग रहे, मेरी निक्की भैन दा व्याह, मैं तो अपने सारे चाह पूरे करांगी।
10: क्यों नहीं चन करे, कहे तो सिर तो पैर तक सोने चमड़ा दें।
9: ठीक है जी, चलो फिर सब तो वध वैरायटी वाले अशोक ज्वेलर कोल, उना कोल गोल्ड ते डायमंड ज्वेलरी दे सारे लेटेस्ट वैरायटी दे गहने ने, सेट, रानी हार, छापा, मुंदरियां, छल्ले, बिस्कुट, चेनियां, वंगा, कोके, टिक्के, कड़े, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, सब कुछ प्योर ते यूनिक।
10: हां नाले मैं साड़ी दियां बाहां भी तबिंगियां करनियां ने, 12 चूड़ियां ओनू भी ले दांगे।
9: तो मेरे जीजे ली घड़ी?
10: आहो अशोक ज्वेलर कोले रेडो दियां, रोलेक्स दियां सारियां घड़ियां हुंदियां ने।
9: चलो फिर छेती चलो, अशोक ज्वेलर 7198 एयरपोर्ट रोड मालचन, इन अशोक प्लाजा, फोन नंबर है 9056714290।
11: ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ।
12: ਓ ਜੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ।
13: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਂਟ, ਟੇਬਲ, ਚੇਅਰ, LED ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ, ਫਲਾਵਰ ਐਂਡ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨਸ, 360 ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਟੈਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ।
12: ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ 6477080079।
14: ਰਿਟਸ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ।
15: ਸਸਤਾ

मेनू मेरी ना परवाह यारा, मेनू तेरी खुशी प्यारी है। हुण रख लवी तू सांभ इनू, तेरे तो जिंदगी वारी है। तेनू उदास कदे नहीं देखना मैं, मेथू जो होया मैं कर जाना। तेरा ना सोचा जिस दिन मैं, उस दिन तो पहला मर जाना, उस दिन तो पहला मर जाना।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: Twin Piston Production.
1: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320. CJMR 1320. The voice of the city.
2: Gagan?
3: हाँ सोनिया,
2: किथे है तू?
3: यार मैं एक्सरसाइज करना आया।
2: मैंने बहुत बढ़िया सपना आया।
3: यार हुण फेर सपना?
2: किथे आ?
3: ओ मैं लेक ते आया।
2: मैं आ रही हूँ।
3: ओ तू इत्थे की करना?
2: उत्थे रुक।
3: हेलो सोनिया, ओए।

0: आंखों में ही रहना, आंखों आंखों में ही रहना।
1: Your voice, your community, your culture. This is CJMR 1320, the voice of the cities.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320. CJMR 1320. The voice of the city.
1: हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर की आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

जिगर, चैन, आराम, रातें, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिंस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: 5 से 8 तक बनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: मजा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर,
2: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा मजा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
3: यहाँ से आपको ढाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 और 10, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।
1: मजा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
4: हाँ जी, जरा एक वेबसाइट नोट करो, afcgrocery.com। एजी एशियन फूड सेंटर दी ब्रांड न्यू वेबसाइट, जिथों तुसी इंडो कैनेडियन ग्रोसरी, मिठाइयां, ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, इंडिया वाले भांडे, सजावट दा सामान, सारा कुछ जो स्टोर ते जाके देखना। हुण एशियन फूड सेंटर दी इस वेबसाइट ते देखो, $100 या इस तो ज्यादा दे ऑर्डर ते पाओ फ्री डिलीवरी इन ऑल GTA एरियाज, फ्री कर्बसाइड पिकअप अवेलेबल इन ऑल लोकेशंस ऑन सेम डे। विजिट afcgrocery.com।
5: Omni Kitchen and Bath Studio for any kind of high-end custom kitchens, bars, wall units, organizers, store fixtures, office units, vanities and granite or quartz countertop. 18 Edwick Drive, Unit 6 and 7, Brampton, Ontario. Or call Jasveer at 416-529-9363. Omni Kitchen and Bath Studio.
6: 416-529-9363। कारवाई करे अतें नतीजे देवे। मेरिया तरजीहां बिल्कुल स्पष्ट हैं, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, भाईचारे की सुरक्षा अतें थोड़े टैक्स दे पैसे की बेहतर वरतों। आओ मिलके अपने भाईचारे नूं होर मजबूत, सुरक्षित अतें जवाबदेह बनाईए। इकट्ठे साडा भविख हुण चंगा शुरू होण वाला है। एडवांस पोल्स 9-10-11 अक्टूबर अतें 16-17 अक्टूबर नूं हन, और 26 अक्टूबर नूं अपना वोटिंग राइट यूज करके मैनू सिटी हॉल एज ए सिटी काउंसलर जरूर भेजो।
7: लो जी, फिर हो गए परेशान।
8: ओ की करा, मॉर्गेज ने खाली मेरी जान।
7: ओ जी, परमिंदर मांगट नहीं होन देंगे थाडा कोई भी नुकसान। परमिंदर मांगट, फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, प्राइवेट फंड्स, RBC नाल टॉप प्रोड्यूसर रह चुके परमिंदर मांगट होरा नु है 25 साल तो भी वध दा एक्सपीरियंस।
8: हुन सोचो ना, आज ही कॉल करो 6472859119।
7: 6472859119। परमिंदर मांगट विद मॉर्गेज अलायंस, मॉर्गेज लाइसेंस नंबर 10 5 3

चावला एंटरटेनमेंट बड़े मान नाल पेश कर देने तो हाड़ा अपना रेडियो शो एशियन विजन। दिलानू रखो तुसी संभाल के आ गया जे हरमन प्यारा आरजे अर्श चावला।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दियां सारियां आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165।
1: ओ हेलो यार, मेरा भी लोड लै जी, ट्रक फेर खड़ गया यार।
2: ओ भरावा, हैप्पी बडियाल ते सुखा टेसी कोल जा ते ट्रक दी एक नंबर रिपेयर करा।
1: सच्ची?
2: ओ मुच्ची,
1: फेयर प्राइस ट्रक रिपेयर सेंटर दे हैप्पी बडियाल ते सुखा टेसी, जो के इंजन रीबिल्ड, ट्रांसमिशन रीबिल्ड, रिपेयर, डीपीएफ क्लीनिंग एंड रिपेयर, इलेक्ट्रिकल रिपेयर, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ए टू जेड सर्विस करके देंगे।
2: इना कोला सालना दा तजुर्बा।
1: हुन एड्रेस भी लिखा।
2: ले लिख ला, 1 गुड मार्क प्लेस, इटोबीकोक, यूनिट 5।
1: कॉल 647-706-9257 647-706-9257।
3: नवरात्रि स्पेशल अनोखा अंदाज दी स्पेशल सेल लगन जा रही है। लेडीज मेंस पार्टी वेयर, ब्राइडल लहंगास, सूट्स, साड़ीज, कुर्तीज, अनस्टिच्ड सूट मटेरियल लेना होवे ते आज ही आओ। सूट्स ते ड्रेसेस कस्टमाइज भी करवा सकदे हो। नवरात्रि स्पेशल घाघरा चोली जस्ट $50। मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मेंशन CJMR एंड गेट 20% ऑफ ऑन एवरी ड्रेस। अनोखा अंदाज, 6101 मेफील्ड रोड, यूनिट 3, ब्रैम्पटन। कॉल 905-794-4005।

0: नवंबर 5 से 8 तक बनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार। आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320।

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: पील रीजनल कौंसिल दी 26 अक्टूबर नू हो रही इलेक्शन मौके ब्रैम्पटन दे वार्ड 9 अते 10 तो उम्मीदवार सतपाल सिंह जौल दा नाम याद रखना जरूरी है। स्कूल बोर्ड दे ट्रस्टी वजों सतपाल सिंह जौल दियां मिसाली सेवावां तो लोकां दे मना विच तसल्ली दी लहर है, जिस करके वार्ड 9 ते 10 दे वसनी रीजनल कौंसलर वजों सतपाल सिंह जौल दी जित यकीनी बना रहे हन। लोकां दियां समस्यावां हल करन लई सतपाल सिंह जौल वालों लगातार तत्परता नाल काम किया जाता है। उना दी कैंपेन नाल संपर्क करन लई कॉल करो 416-895-3784 ते 416-895-3784।
3: हुण अपने मनपसंद प्रोग्राम रंगला पंजाब नाल जुड़े रहो, जिथे भी होवो, जदों भी चाहो।
4: जी हाँ, हुण तुसी सुन सकदे हो CJMR 1300 VAM वक-वक प्लेटफॉर्म्स ते।
3: भावे तुसी घर होवो, दफ्तर विच या फिर लंबे सफर ते, अपनी मनपसंद आवाज नू अपने तो दूर ना होण दियो।
4: डाउनलोड करो CJMR 1300 V दी ऐप या सुनो iHeartRadio ते।
3: इत्थों तक कि तुसी अपनी टेस्ला गड्डी विच भी सानू सुन सकदे हो।
4: फोन राही सुनन लई डायल करो 647-910-1300-1320।
3: अते अमरीका विच सुनन लई कॉल करो 641-741-1919।
4: ते इन्ना ही नहीं, वक वक IPTV प्लेटफॉर्म्स ते रंगला पंजाब TV राही सानू लाइव देखन दा आनंद भी माणो।
3: ता फिर देर किस गल दी, अपनी मिट्टी दी खुशबू, पंजाबी बोली दा प्यार अते पंजाबियत दा एहसास माणन लई जुड़े रहो CJMR 1300 VAM नाल।
4: CJMR 1300 VAM, तुहाडी अपनी आवाज, तुहाडा अपना पंजाब।
3: सुनते रहो प्रोग्राम रंगला पंजाब।

0: अपने मनपसंद प्रोग्राम रंगला पंजाब नाल जुड़े रहो, जिथे भी होवो जदों भी चाहो।
1: जी हाँ, हुण तुसी सुन सकदे हो CJMR 1300 VAM वख वख प्लेटफॉर्म्स ते।
0: भावे तुसी घर होवो, दफ्तर विच या फिर लंबे सफर ते, अपनी मनपसंद आवाज नू अपने तो दूर ना होण दियो।
1: डाउनलोड करो CJMR 1300 V दी ऐप या सुनो आई हार्ट रेडियो ते।
0: इत्थों तक की तुसी अपनी टेस्ला गड्डी विच भी सानू सुन सकदे हो।
1: फोन राही सुनन लई डायल करो 647-910-1300
0: अते अमरीका विच सुनन लई कॉल करो 641-741-1919 641-741-1919 ते।
1: ते इन्ना ही नहीं, वक वक IPTV प्लेटफॉर्म्स ते रंगला पंजाब टीवी राही सानू लाइव देखन दा आनंद भी माणो।
0: ता फिर देर किस गल दी, अपनी मिट्टी दी खुशबू, पंजाबी बोली दा प्यार अते पंजाबियत दा एहसास माणन लई जुड़े रहो CJMR 1300 VAM नाल।
1: CJMR 1300 VAM, तुहाडी अपनी आवाज, तुहाडा अपना पंजाब।
0: सुनते रहो प्रोग्राम रंगला पंजाब।
2: ऑलराइट, एक बार फिर तो स्वागत है जी। 2:25 हो चुके ने ते ले चलिए तुहानू हुण कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल दे दफ्तर। इत्थे कल जिहड़ी अनाउंसमेंट अवतार जी ने कीती ना, मैनू पता भाई मैनू किन्ने कॉल्स आए, क्योंकि मैं आप फिर अपनी रिकॉर्डिंग सुनी, मैं कह सुन तां लवां। वाकया ही अवतार जी ने उही नंबर बोलिया ही ना, ते प्राइस उही सी, ते काफी लोकां ने इस डील दा फायदा भी उठाया जी, एंड उठा रहे ने जी। पर देखदे कि वो डील अवेलेबल है भी कि नहीं हले, बिकॉज प्राइस ही इन अमेजिंग सी, मुला सोल्ड आउट हो गए होंगे। बट लेट्स सी के अवतार जी वो डील लेके आए ने कि नहीं। अवतार जी, अ वेरी वेरी गुड लॉन्ग वीकेंड आफ्टरनून।
3: वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड गुड लॉन्ग वीक आफ्टरनून, क्या होंगे।
2: लॉन्ग मंडे भी छुट्टी है,
3: पर साडे लई सब तो दिन इको जे हुंदे, क्योंकि असी काम करना ही हुंदा वा भैन भरावां लई सारिआं ने मिल के।
2: बिलकुल बिलकुल।
3: बाकी डील दी गल रही, कल बहुत सोहना हंगारा मिलिया, कल बहुत सोहनिया टिकटां इशू हुईयां। सो इट्स रियली गुड, लाइक नाउ ओह डील इज ओवर।
2: तुहानू
3: पता ही आ, एयरलाइना जिस हिसाब नाल बिकदी है फिर उस हिसाब नाल हो जांदा जी, डन सो खतम कहानी,
2: फिनिश्ड।
3: सो फिनिश थी, तो हुण नवी डील्स हैगीआं वा, जे किसे ने आउणा तो $750 दी हो गई है ओही टिकट।
2: वाओ,
3: तो बैगां दे नाल पहला हर चीज दी वैल्यू है, जिवें जिवें बिकदी है उवें उवें चेंज हुंदी रहिंदी।
2: 100% 100%।
3: हां, सो मैं वो आपां तुहानूं पता उस चीज नूं आपां ओह नहीं कर सकदे हैगे जी, जो हैगा जनरली जो हैगा ओही दस्सांगे तुहानूं। हुण $750 दे विच दिल्ली तो किसे ने आउणा हैगा, वन वे दो बैगा दे नाल, जे किसे ने उधरों इधर आना ते प्लस जाना हैगा, ओ $1390 तो स्टार्ट हो जाते टर्न
2: पैक।
3: बाकी जेडे रेगी इधरों जान दिया हजे भी साडे कोल कुछ अमृतसर दिया डेटा साडे कोल अवेलेबल हैगिया, जेडिया कि तुसी सानू लै सकदे हो, जिवें कह लो भी वधिया प्राइसिंग दे विच। वैसे तां 1500-1400 वन वे चलदा पिया वा, पर हुण लाइक टोटली थोड़ा जिहा डिफरेंट हो गया वा, हुण ओही तुहाडे साडे कोल कुछ सीटां अवेलेबल पईआं, पर कुछ डिफरेंट प्राइजेस दे विच पईआं, पर पईआं जरूर आ जिहड़ीआं कि मार्केट नालों बहुत सोहणा रेट है जी।
2: जी,
3: तो ऑलवेज कॉल कर लो, $1400-1450 चो स्टार्टिंग हो जाएगी अमृतसर दी वन वे टिकट, $1295 दी तुहानूं दिल्ली दी रिटर्न वन वे टिकट दित्ती जाऊगी, ते रिटर्न टिकट $1799 तो शुरू होएगी, उस तो बाद $2150 तक वन वे टिकट रिटर्न टिकट जा रही है दिल्ली दी, ते जे अमृतसर जाना हैगा $2090 तो लैके $2490 तक तुहानूं अमृतसर दी रिटर्न टिकट दित्ती जाएगी, ते उस तो बाद लहिंदे पंजाब वल आ जाओ जी, उही $1050 तो लैके $1250 तक तुहानूं वन वे टिकट है, ते $1890 तो लैके $2190 तक तुहानूं रिटर्न टिकट है इन्हां दी, इस्लामाबाद कराची लाहौर। ते बाकी जे किसे ने जी इंडिया जांदे जांदे दुबई रुक के जाना, साडे कोल बहुत सोहणी ऑप्शन है जी, ओह तां लैंड पैकेज एडा अमेजिंग है जी, तुहानूं 3 रातां 4 दिनां दा तुहानूं पैकेज मिलेगा जी, बहुत रीजनेबल प्राइस दे विच $649 दे विच।
2: वाओ,
3: $649 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਕੇਜਿਸ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4-star ਹੋਟਲ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਟਿਕਟ, ਸਟਾਰ ਕਰੂਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਿਦ ਡਿਨਰ, ਤੇ ਸਫਾਰੀ ਵੀ ਵਿਦ ਡਿਨਰ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਟੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਬਈ ਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ, ਮੱਚ ਮੋਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ $200-$300 ਦੇ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਟਿਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ 30 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਟਰੈਵਲ ਭਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਕਟਾਰੀਆ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤੋ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 9:30 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਆਫਿਸ, ਡੈਰੀ ਐਂਡ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮਾਲਟਨ ਵਾਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਗੌਰ ਐਂਡ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬਰਾਮਟਨ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਆਫਿਸ 9:30 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਤੇ ਆਨ ਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਪੀਸੀਸੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਓਸੀਆਈ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਓਸੀਆਈ ਨਵੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡੇਟ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋ ਵੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਔਨ ਵਨ ਰੂਫ, ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਆਰ ਕਾਰਡ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਟੀਜਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਭਰਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਡੁਬਈ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਯੂਰਪ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਟਾਰੀਆ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਸੱਤੋ ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਕਰੇਬੀਅਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰੇਬੀਅਨ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਣਾ, ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸਟਰੀਕਾ, ਬਹਾਮਸ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਕਟਾਰੀਆ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਸੱਤੋ ਦਿਨ ਖੁੱਲਦਾ। ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਆਪਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਨੋਨ ਚੇਂਜੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਟਾਰੀਆ ਟਰੈਵਲ ਫੋਲ ਕਰ ਲਓ 905-678-1200.

0: नवंबर 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: की थोड़े बैंक ने मोर्गेज नु इनकार कर दिता है, की थोड़ी क्लोजिंग लागे आ रही है, या तानु पैसे दी पै गई है लोड, ते इको एक नाम याद रखो, मोर्गेज अलायंस नाल काम कर दे, विक सैदोव। फर्स्ट मोर्गेज, सेकंड मोर्गेज, ए लेंडर, बी लेंडर, प्राइवेट फंड्स चाहते हो, घर दी रीफाइनेंसिंग करवाना चाहते हो, या तुसी 24 घंटे दे विच विच फंड्स चाहते हो, ते इको एक नाम, विक सैदोव, 30 टॉप फ्लाइट ड्राइव, यूनिट नंबर 1 इन मिसिसागा। वधेरे जानकारी लई कॉल 6478 8272 6479688272। लाइसेंस नंबर 10530।
2: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है, सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक। चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनता है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसलर कैंडिडेट, वार्ड 9 और 10।
3: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
1: घर दा एक्सटीरियर होवे मजबूत ते लुक होवे कमाल दी, ए है कमाल ओरकल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड दी। क्वालिटी वर्क, प्रोफेशनल सर्विस, बिल्ड टू लास्ट। मैनसूरी ते स्टोन वर्क, इंटरलॉकिंग, फेंसिंग, पैडियो, रिटेनिंग वॉल्स बनाना चाहते हो, लैंडस्केपिंग, हार्डस्केपिंग, थोड़े एक्सटीरियर प्रोजेक्ट लई कंप्लीट सोल्यूशन ओरकल कंस्ट्रक्शन। रिपेयर तो लैके कंप्लीट प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन तक ओरकल कंस्ट्रक्शन दा नाम याद रखना जी। आज ही कॉल करो 1-888-688-8956 या 416-474-6836। Oracle Construction, strong foundations, lasting results.
4: डायमंड एंड डायमंड्स पर्सनल इंजरी लॉयर्स। जेकर तुहाडा कार, वैन, ट्रक चलाउंदे समय एक्सीडेंट हो गया है या फिर तुसी किसी जगह ते तिलक के डिग पए हो, कसूर तुहाडा है या नहीं, तुसी पहला वांगू हुण काम ते जा अपने व्यापारक अदारे ते नहीं जा सकदे। सारे खर्चे ज्यों दे त्यों बरकरार हन। उपरो इंश्योरेंस कंपनियां भी आनाकानी कर रही हन। तुसी सोच रहे हो करिए तां हुण की करिए, चीचियां ना वटो, बस एक नाम याद रखो, किसी भी तरह दे एक्सीडेंट हो दी सूरत विच तुहाडे हक्कां दा रखवाला। मानसिक पीड़ा दे नाल शरीरिक दर्दां दी मलम, डायमंड एंड डायमंड पर्सनल इंजरी लॉयर्स। फ्री सलाह मशवरे लई अज ही कॉल करो अमनदीप चावला 1-800-567-HURT-4878 और डायरेक्ट नंबर 416-557-5010 416-557-5010। डायमंड एंड डायमंड्स पर्सनल इंजरी लॉयर्स।
5: इंतजार हुण खत्म होया। रीमैक्स गोल्ड रियल्टी दे गौडी खुमान लैके आए हन साउथ कैलडन विच प्रीमियम रिटेल अते ऑफिस स्पेस खरीदण दा एक होर सुनहरा मौका। पेश है कैलडन कमर्शियल सेंटर, हाईवेन 10 अते हाईवेन 410 दे प्राइम इंटरसेक्शन ते 15 एकड़ विच बन रहा एक नवा कमर्शियल डिवेलपमेंट। रिटेल अते ऑफिस यूनिट्स हुण सेल लई अवेलेबल हन। कैलडन दी इस नवी कमर्शियल डेस्टिनेशन विच अपनी स्पेस अज ही पक्की करो। अपनी यूनिट अज ही बुक करन लई साडी टीम नाल कॉन्टैक्ट करो।

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर। शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी, योर वॉइस, योर रेडियो स्टार। आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320। CJMR 1320।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, इटोबिको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165।
1: ताजियां सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तुहाडा मनपसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते, क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया अनाज मार्ट। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दालां, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स जां फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस लई अज ही विजिट करो अनाज मार्ट, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते, 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट 42, ब्रैम्पटन। कॉल 905-928-8557 अनाज मार्ट।
2: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
3: HK Movers,
2: local and long distance, we also ship cars, Kailor Transport and moving services.
3: For service with a smile, give us a call.
2: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
3: 416-524-6704 pe.
2: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
4: Long distance moving specialist,
2: HK Movers.
5: HK Movers.
6: अपने घर विचले IPTV बॉक्स दे पूरे विश्व भर दे हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मद्रासी, तमिल, पाकिस्तानी चैनल्स, फिल्मां, सीरियल, ड्रामे, न्यूज़, बच्चों दे चैनल अनबीटेबल कीमत दे देखना चाहते हो तां भारी बचत लई अज ही कॉल करो 647-554-5859 647-554-5859।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

गतिस ग्रह लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गतिस मंग था खेलत भुज मेलत लपट जपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: कहती रैट रैट माने चूहा, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ।
1: ए मेड मैड, मैड माने पागल, बी ओ बॉय बॉय, बॉय माने लड़का, अरे मतलब इसका तुमको हो तो क्या हुआ।
0: सी ए टी कैट, कैट माने बिल्ली, अरे टी रैट रैट माने चूहा, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ।
1: ए मेड मैड, मैड माने पागल, बी ओ बॉय बॉय।

GOAT goat. Goat माने बकरी, LION lion, lion माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?

0: तक नहीं जहां में हंसी न होगा कोई हम सा भी।
1: नोज़ नोज़ नोज़ माने नाक, T-R-O-W क्रो, क्रो माने कवार, मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ।
0: क्रिएटी कैट, कैट माने माँ।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.
1: हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की।
2: क्या क्या क्या

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चल न सपोगे समझे
0: हाँ सम

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।